ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा।

शराबी आके जो तेरे देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यार संभलना मुश्किल।

Magic had to remain. Match made out to see who gaya. Pull out जो तेरे देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे याद संभालना मुश्किल